कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: से सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवे कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: सो एक सवाल आया सीगा कि जे गुरबाणी स्वर्ग नरक नू जो मरन तो बाद विच कोई जगह हैगी आ उनू रिजेक्ट कर दी आ तो फिर गुरबाणी दे विच बहुत सारे शब्द आउंदे ने जिहड़े असीं जो देखदे आ तां इंज प्रतीत हुंदा है कि मरन तो बाद ही गल कीती जा रही है। जमदूतां दी गल हुंदी आ, चित्रगुप्त दी गल हुंदी है, धर्मराज दी गल हुंदी है, रीइनकारनेशन, आवागमन दी गल गुरबाणी विच शब्दां विच लिखी आउंदी है। इन्हां कंसैप्ट्स नूं जां इह जिहड़े शब्द हैगे ने इह आपां आउण वालियां क्लासां विच हौली हौली खोलांगे जिन्हां विच जमदूतां दी गल कीती है, चित्रगुप्त, धर्मराज आदि। अज दा अपना जिहड़ा मुख कंसैप्ट कंसैप्ट है उह आपां स्वर्ग ते नरक दे संबंध विच रखणा है। सो गुरबाणी जो है मरन तो बाद दे स्वर्ग ते नरक दे विच विश्वास नहीं रखदी। इह तुहानूं सारी क्लास जिस्ट अज शुरू ही तुहानूं दे दिता। सारी क्लास तकरीबन आपां नूं घंटा लग जाएगा, शायद घंटे तो उत्ते भी हो जाए, उहदे उत्ते आपां विचार करांगे। एक गल ध्यान विच रखना कि जदों गुरबाणी दे विच हवाले आउंदे ने नरक दे जां स्वर्ग दे, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ

संगत जी, जो गुरु अर्जन देव महाराज जी अज के पावन बचन विच सानू सिख्या दे रहे ने, यह इतिहासक तौर पर इतिहासक हुक्मनामा है। इतिहासक हुक्मनामा किवें है, थोड़ी जी भूमिका मैं आप जी नाल सांझी करनी चाहुंदा हाँ, तां कि संगत नूं ते सानू समझ आवे। जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने महाराज की सारी बाणी लिखा ली, उस समय गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना है श्री दरबार साहिब अमृतसर। जदों प्रकाश किया तो पहला हुक्मनामा आया, सारी संगत नूं पता है कि हुक्मनामा आया सी सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ये हुक्मनामा सच्चे पातशाह जी ने 1604 ईस्वी नूं बख्शिया। एक साल बाद 1605 ईस्वी की घटना इतिहास ने बयान की है कि पृथ्वी चंद ने, काजियां ने, मुलानिया ने, चंदू दुष्ट ने, सारिया ने रल के अकबर बादशाह नूं शिकायत की कि जिस ग्रंथ का प्रकाश धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दरबार साहब विखे किया है, उहदे विच इस्लाम की निंदा की गई है, हजरत मुहम्मद साहब नूं माड़ा किया गया है। बादशाह अकबर जानता सी कि गुरु अर्जन देव महाराज जी इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की वो लाहौर दे विच सेवा वेख चुका सी कि किवें काल दे समय उन्होंने सेवा की, किवें मुरदियां दा संस्कार किया, किवें मुरदियां नूं दफन किया, किवें लंगर लाए। वह तो मनुखता की भलाई करने वाले ने, पर वह बादशाह सी ते बादशाह दा काम हुंदा न्याय करना। न्याय करन दे लई इतिहास कहिंदा है कि उन्हें गुरु अर्जन देव जी नूं बुलाया कि तुसी बटाले शहर दे विच धन गुरु ग्रंथ साहब का सरूप लैके आओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी खुद नहीं गए, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते ने कि बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी ते 5-7 सियाने गुरसिखा नूं भेजिया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप बटाले शहर विच गया। बटाले दे अंदर 1605 ईस्वी नूं अकबर बादशाह महाराज जी का प्रकाश करन नूं कहिंदा है, बाबा बुढ़ा जी प्रकाश कर दे। जदों प्रकाश करते ने तो अकबर बादशाह उंगल रख के कहिंदा है, इत्थों पढ़ो इत्थे की लिखिया है। संगत जी सुनियो ते दस्यो, कोई समझ आई है जो महाराज ने हुक्मनामा दिता इतिहासक तौर पर? दूजा, बटाले शहर के अंदर बाबा बुढ़ा जी ने मुख वाक लिया ते हुक्मनामा आया, तिलंग महला पंजवा, खाक नूर करदंग आलम दुनियाए,

दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए गैवान हैवान हराम कुस्तनी मुरदार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादर दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बफ्तनी तब चे कारे बदाए हवाल मलूम करदं पाक अल्लाह भुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। संगत जी मैं हुक्मनामा पढ़िया आप जी ने सुनिया कोई समझ आई है जी? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सारा हुक्मनामा है फारसी विच। एक बारी सारे प्यार ना कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी कहोगे कि संगत जी समझ आई नहीं है पर तुसी कहंदे हो प्यार ना कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इहदे विच भी राज है। राज की है कि जिहड़ा हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बख्शिया है वह सारा फारसी विच। ते अकबर बादशाह केड़ी भाषा पढ़िया है? फारसी। जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब जी समझाना चाहते ने उसे दी भाषा विच हुक्मनामा आया। हो सकता सी गुरमुखी विच आउंदा पंजाबी विच आउंदा ते उन्हों समझ ना आउंदी। जिहड़ी उहदी भाषा है उसे भाषा विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हुक्मनामा दिता। ते हुक्मनामे दे बोल सन खाक नूर करदं आलम दुनियाए। परमेशर ने खाक दे विच अपना नूर पाया आलम ए संसार बना दिता दुनियाए ए दुनिया बना दिती। असमान जिमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए। ए असमान ए जमीन ए दरख्त ए खुदा दी पैदाइश ने अल्लाह दी पैदाइश ने। बंदे चशम दीदंग फनाए। ऐ बंदे जो तू अपने दीदियां नाल वेखदा अखां नाल वेखदा इन्ने फना हो जाना। आप जी ने हुणे सुनिया कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। जदों बादशाह अकबर ने सुनिया कहिंदा काजियो मलाणियो तुसी झूठ बोलदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सच दा पैगाम दिंदी है। इत्थे दी आरंभता ही इत्थों हुंदी है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। संगत जी उस समय काजियां ने सोचिया सी कि मुसलमान बादशाह है साड़ी शिकायत नूं सुन के इस ग्रंथ ते बैन ला देवेगा कि प्रकाश नहीं हो सकता। पर ये ते उल्टा श्रद्धालु बन गया। उस समय ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते आ कि चंदू दुष्ट। मैं शब्द वरत्या जी दुष्ट क्यों? क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने जदों इहदी वचन सुनिया कि चबारे दी इट मोरी नूं लाइओ ते संगत कहन लगी ये हंकारी है इहदी लड़की दा रिश्ता नहीं लैणा। गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कराउण दे विच इसदा बहुत वड्डा हाथ है चंदू दुष्ट दा। ये चंदू दुष्ट कहन लगा बादशाह अकबर नूं कहन लगा कि इन्हां सिखां ने बादशाह सलामत तुहानूं खुश करन लई हुक्मनामा कढ के रखिया सी। जे तुहाडा वचन होवे ते आपां फिर हुक्मनामा लईए। बटाले दी धरती ते संगत जी दोबारा हुक्मनामा लिया ते बाबा बुढ़ा साहिब जी ने जदों हुक्मनामा लिया ते हुक्मनामा आया मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे
ਹੋਏ ਪੈ ਖਾਕ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਦਰਾ। ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀਓ ਮਲਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਕਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇ

कि जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कल्याणकारी बाणी के उपर हमला करता है, सिद्धांत से हमला करता है, इतिहास से हमला करता है, उहदा यही हशर होना है कि जो जो दिसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रल सी। ते संगत जी, जिस दिन 31 अक्टूबर 1984 नू बीबी इंदिरा खाक दे विच रली, उदों फिर हुक्मनामा आया सी इतिहास विच, सुनियो महाराज जी बोले गुरु रामदास जी दे दर तों कि सोरठ महला तीजा, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, पहरलाद जन तुद राख लै हर जियो, हर नाकश मार पचाया। ऐ परमेश्वर जी, तुसी प्रहलाद वर्गे सुभावां दी रखिया करदे हो, ते जिन्हां दा सुभा हरनाक्ष वर्गा है उन्हां नूं खत्म कर देंदे हो, मार देंदे हो। तो जो महाराज जी समझा रहे ने, फिर बेनती है ज्ञानी जी नूं कि आओ आरंभ तों

मैं किस दी अगे जाके जाचना करा कि दर का मंगता बना किस आराधी किनू आराधा जदों पता है कि सब कुछ करन कराउण वाले वाहिगुरु जी आप हो तुहाडे तो बगैर पत्ता नहीं हिलदा इस करके मैं संसार दे राजे महाराजियां दे अगे नहीं झुकना मेरे लिए ते तुसी तान भी तुसी हो दीवान भी तुसी हो माण भी तुसी हो मैनू जो कुछ भी चाहिदा है तुहाडे तो ही

सारे सुख देन वाले नौ प्रकार दे खजाने देन वाले ने परमेश्वर जी, ते उन्हां दा स्वरूप की है? निरभौ, ओ किसे तो डरदे नहीं, निरंकार उन्हां दा कोई आकार नहीं, भव खंडन साडे

ऐसा नाम धन दिता जिहड़ा कदी मुकना नहीं। जिन्ना मर्जी वरत लईए जी, खाव है खर्च है रल मिल भाई, टूट ना आवे वध दो जाई। इस खजाने ने कदी

उपदेश नू सुन के किन्ना दा उपदेश साध संतन का साधा दा संत जना दा गुरमुख जना दा गुरु दा उपदेश सुन के जिहड़ी जमा दी मुथाजी है ना जी वो खत्म हो गई। हुण जम्मन मरन दा डर मिट गया, हुण विकारां दा डर खत्म हो गया। जदों गुरु दा उपदेश सुनिया पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग। जदों पूरे गुरु का संत जना का उपदेश सुनिया

संगत जी, श्लोक डखने महला पंजवा। एक एक अखर महाराज की बाणी का ना साडा बड़ा ध्यान मंगता है। शब्द आया डखने, विद्वाना तो आप जी हर रोज सुनते हो कि दखण के अंदर पंजाब का जिहड़ा दखण वाला पासा है, इधर जिहड़े लोग रहिंदे ने ये भाषा बोलते ने, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने उस भाषा दे विच, धन गुरु अर्जन देव जी ने उस भाषा दे विच शब्द उच्चारण किया। मैं आप जी का थोड़ा जिहा समा इस पासे लैना चाहुंदा तां कि गल समझ आवे। संगत जी, असीं बड़े अमीर हाँ, असीं बड़े धनाड़ हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज जी का एक शब्द है कि हम धनवंत भागट सच नाए, हर गुण गाव है सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। इन्ने अमीर हाँ, इन्ने धनाड़ हाँ कि रतन लाल जा का कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावे है खर्चे रल मिल भाई, टूट ना आवे वध दो जाई। बड़े पक्षों तो असी अमीर हाँ, इतिहास के पक्ष तो साढ़े वर्गा इतिहास कोई नहीं। गुरबाणी के पक्ष तो संगत जी संसार दे विच इहो जिहा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बराबरी कर सके। एक अंग्रेज विद्वान होया है, उहदा नाम है डॉक्टर ट्रंप। उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उपर खोज की, तो डॉक्टर ट्रंप खोज करके कहता है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 16 भाषावां का ज्ञान। किनिया जी? 16 भाषावां का। वह अंग्रेज है, आपां सिख हाँ, संगत जी माफ करना, आपां खोज नहीं करते, मत्था टेकते हाँ, सत्कार करते हाँ, करना भी चाहिए, क्योंकि महाराज ने बाणी में समझाया है कि डंडौत बंधन अनकबार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पर जो अंदर खजाना भरिया पिया है, जे संगत जी उन्हों खोल के वेखते नहीं, फिर मान नहीं कर सकते। जे एक बच्चे नू पता ही नहीं है कि मेरे पिता कोल किन्नी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो अपने पिता ते मान नहीं कर सकता। ते महाराज दी बाणी विच किन्ने रतन भरे ने, किन्ने लाल भरे ने, जवाहर भरे ने, मोती भरे ने। संगत जी, 16 भाषावां बारे डॉक्टर ट्रंप ने कहा, ते डॉक्टर ट्रंप दा ये दावा आपां उन्हूं सच नहीं मान सकते। जिन्ना बंदा इहदी खोज करेगा, उन्हूं होर भाषावां लभदियां जाणगियां। महाराज कह रहे ने डखने दे विच, जे अज उन्होंने बाणी दी विचार करन नूं किया, ते किया कि संगत दे नाल सांझ भी पाओ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच किहड़ियां किहड़ियां भाषावां दा ज्ञान है। आ संगत जी नोट करियो, पहली भाषा संस्कृत। संस्कृत दा बदलिया होया रूप, प्राकृत रूप सानू मिलदा श्लोक सहस्कृति महला पहला, श्लोक सहस्कृति महला पंजवां। जे मैं हुण स्टेज तो बोलांगा, संगत ने कहना सानू समझ नहीं आई। कोई विद्वान पंडित होया तो उन्हें नमस्कार करनी है, महाराज ताड़ी बाणी विच इन्ना ज्ञान। आ सुनियो जी, कतंच माता कतंच पिता, कतंच बंता बनोद सुता, कतंच प्रात मीत हित बंधव, कतंच मोह कुटंब अते। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच संस्कृत दे श्लोक, सहस्कृति दे श्लोक। फिर दूजी भाषा जिहदे विच बुद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, उन्हूं कहिंदे आ पाली, बुद्ध धर्म के ग्रंथ। महाराज की बाणी आउंदी है गाथा, करपूर पोहप सगंधा, परस मनुख है देहंग मलीनंग, मजा रुदर दरगंधा,
नानक अथ गर्बेन अज्ञानो परमानो परजंत आकाशै दीप लोभ से खंडने गशेन नैन भरेन नानक बिना साधु न सिद्धते। संगत जी तीसरी भाषा अरबी ते फारसी। मैं आप जी नाल आरंभ दे विच शब्द विचारिया सी सारा फारसी विच। होर शब्द सुन लो, जक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। सारा शब्द ना पढ़ा समय की सीमा। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर संगत जी संस्कृत भी है, पाली भी है, अरबी भी है, फारसी भी है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर संगत जी मराठी भी है। महाराष्ट्र दे विच बोली जाण वाली, आओ मराठी भाइयो, तुसी वाहिगुरु दी सिमरन करना चाहुंदे हो, तुहानू मराठी चंगी लगदी आ, आओ मराठी विच बोलदे आ। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र दे होए, उन्हां दे 61 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज ने। संगत जी कदी कदी हुक्मनामा सुनदे हो सारा मराठी विच। पहल पुरिए पुंडरक वणा तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर न चंती नाचना पहल पुर साबरा अथोन प्रसाद मरा असगा आसुसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा ना चंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क न चा प्रमिया चा केसवा बचौनी अये मैये एक आन जियो पिंदी उबकले संसारा प्रम प्रम आए तुमचे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारना जम कारना। गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर संगत जी मराठी। आ महाराष्ट्र विच सुन रहे होणगे वीर, गुरु ग्रंथ साहब दा हिरदा वेखो किड्डा वड्डा। तुसी मराठी बोलदे हो, आओ वाहिगुरु दा सिमरन करिए। गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर बंगाली। बंगाल दे रहन वाले ने भगत जयदेव जी। दास उत्थे दुर्गापुर ते आसनसोल कलकत्ते जांदा रहिंदा है। भगत जयदेव जी बंगाल दे रहन वाले ने, उन्हां दा मंदिर वेख के आया। दुर्गापुर दीयां संगतां आसनसोल दीयां संगतां ये दो शब्दां नूं संगत जी बंगाली भाषा दे विच वंडदियां ने, दसदियां ने कि गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर भगत जयदेव जी नूं थां दित्ती गई है। जदों सिंह साहब जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब किसी ग्रंथी सिंह नूं रखना, किसी अखंड पाठी साहब नूं सेवा देनी आ, कहिंदे ने भगत जयदेव जी का पता सुनाओ। संगत जी सुनियो, महाराज की बाणी किड्डी अमीर है। परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परम अद्भुतंग परकिरत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत् मयंग नादनोत जसमरनेन जन्म जराद मरण भयंग। संगत जी सारा शब्द ना पढ़ा क्योंकि घड़ी की सुई मैनू कह रही है ज्ञानी जी समा घट है। बंगाल की भाषा, मराठी भाषा, आ बिहार दे विच यूपी विच जिहड़ी बोली जाती है ब्रज भाषा, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्नू भी थां दिता गया। भगत कबीर जी दे संगत जी कई शब्द ने जिहड़े ब्रज भाषा दे विच ने। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर फॉरन दीयां विदेशां दीयां लैंग्वेज, फॉरन लैंग्वेज ओ किहड़ियां, श्रीलंका दे अंदर संगत जी बोली जाण वाली बोली तन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ भी दर्ज है। उदाहरण दे तौर ते मैं व्याख्या नहीं करदा, केवल श्लोक पढ़ जाना। गच्छ हो पुत्री राजकुवार नाम भनो सच दूत सवार। गच्छ हो
कोई समझ आई है जी? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि श्रीलंका विच बोली जाण वाली बोली किन्ने अमीर हाँ जी असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर किन्नियां भाषावां दा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब दे विचों हुण मैं हिंदी बोलन लग्या आप सारिया ने कहना सानू समझ आ गई है।

0: कीर्तन सुन दी दात उन्हां नूं मिलदी है जिन्हां दे मत्थे दे भाग चंगे होण।
1: महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा।
0: संगत जी ध्यान ना सुनियो, परमेश्वर डूंगर पहाड़ा विच भी आ, जला जल विच भी आ, थलां धरती ते भी आ, भूम इस भूमि ते भी आ। अगे महाराज जी कहिंदे आ बना जंगलों दे विच भी आ, फल फलों दे विच भी आ, कंदरा गुफावां दे विच भी आ। परमेश्वर कित्थे कित्थे है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछो, जले हरी थले हरी, उरे हरी बने हरी, गिरे हरी गुफे हरी, छिते हरी नबे हरी, ईहां हरी ऊहां हरी। महाराज जी समझा रहे

संगत जी आकाश दे विच भी पूर्ण हब घटा सारिया जीवां दे अंदर भी सबै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोले रे परमेश्वर।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवे नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन तो हफ्ते दे सत्तों दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007
1: गैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 Trent Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालिया दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stand

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते।

देव। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law to Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Ina to kise vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www

केसर कुसुम मृग में हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योति ने ही सर्वे परमल करना ये पट पांडा।

निर्भव निरंकार तत् नाम जग किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लगाओ पाओ।

मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पार तीर्थ नावैर चाह पूजा गरवा सुबह कर जोगी सुन त्यावन जेते लाख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजै देण के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते कूड़े आरा खारा बावे कार इक होंदा खाए चले।

जानिए हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे कच्चा तो सच ता पर जानिए जा सच धरे पिया ना सुन मर हसीए ता पाए मुख दुआ।

गए पौड़ी दान में तलिका जय मिले समस्त कलाइए कुड़ा लाल छड़िए ओ एक मन अलख त्याइए पलते हो पाइए।

क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ना भव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संयुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आदि जुगादि अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उद्रण।

0: अग अंतक बदन सल कव गुर रामदास तेरी शरण।
1: ज्योत रूप हरे आपे गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यो तत मिलायो। अंगद कृपा तारे अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र गुर रामे दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन, मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन।
2: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासुर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए, पौ मन है तुम लिया गर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन, नाम लै तुप जो जो परगास। जहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हार संग समाणे। एहो राज जोग गुर रामदास, तुम हो रस जाने हमें अव गुण परे। एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीतन। उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राम।

पुरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरहि तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द प्रगासा। हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरहि तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटहो वारिया सद ही। तेरे नाम विटहो बल जाई, रहाओ हम शब्द मुए शब्द मार जी वाले पाई। शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ। हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता। हर स्यों रहया समाई, शब्द न जाने से अन्ने बोले, से किते आए संसारा। हर रस न पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मनमुख मुगद गुबारा। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई,
ਪਾਈ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਪਾਈ। ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਪਾਈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨ ਮਿਟੈ ਪਾਈ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਪਾਈ। ਅਵਰ ਨ

0: जन मन बसया सोए पौड़ी तोरे फण पावे हर रंगी
1: हर मुसवारिया कोठे मंड पाविया दाए बैठे कर पसारिया
0: चीज कर मन पावे
1: हर भूजन दाही हरिया कर तुम्हारे खाया

0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: पौड़ी वड्डी की वड्याइया किस कहना कह ना जाए, सो करता कादे करीम ने जिया रिज संभाए, साई कर कमा मित्र छोड़ी दिन पाए, नानक की बारी हो दूजी ना ही जाए, सो करजित सिर जाए, सो करजित सिर जाए सोत।

जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसरह तू स्वामी। जाना बरस पचासा, हम मूड़ मुगद सदा से पाई। गुर के शब्द प्रगासा, हर जियो तुदनो सदा साला ही प्यारे। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन विसरह तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड़ मुगद सदा से पाई। गुर के शब्द प्रगासा, हर जियो तुम आपे देह बुझाई। हर जियो तुद विट्टो हूँ।

विट हो बल जाई रहा। हम शब्द मोए शब्द मार जीवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द न जाने है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर विख मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वस्या मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई, करता करे सो होई।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: दुख किया पंडा खुलिया

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवामा दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्बलो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

तन्वाके गुरु साहिब जियो हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधव हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर देसा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाव हो एह पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो।

साथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु राखो प्रभु डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ

0: ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ abmcollege.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

करेगा, तेरे लिए जून तैयार होएगी, फिर कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा, तेरे लिए सजा तैयार होएगी भोगनी पे। महाराज ने एक बसंत राग अंदर शब्द है, वो मैं तुहानू श्रवण करा दा, ध्यान नाल सुने। उत्थे महाराज ने जिक्र किया, बंदा ऊब जाए दा अर्थ है हंकारी बड़ा हुंदा है। केड़ी चीज वेख के, सब तो पहला तो अपना पहरावा ही देख के हंकारी हो जाना, सोना बड़ा है, पग बड़ी सोहनी अज बद हुई है, अज ते बहुत सोहना दाड़ा लगता है, अज मेरा मुंह बड़ा सोहना है, अज मैं कपड़े बहुत सोहने पाए ने, अपने आप नू शीशे च वेख के हंकारी हुंदा है। घरों निकलदा परिवार वेखदा हवेली वेखदा कारां वेखदा हंकार विच रहिंदा। एक मुसलमान विद्वान ने गल बड़ी प्यारी लिखी, कहलगा एक दिन बड़ी टौर कड के सोने कपड़े पाके हंकार विच तणिया, जदों निकलिया थोड़ा अड्डियां चुक के छाती तान के तुर रहा सी, लोक मिलदे सन, सेठ आया सलाम हो रही सी, कोई हथ चुक हथ जोड़ के चुकद, कोई सलाम करद, जिमे जिमे लोग चुक रहे सन तिवे तिवे अंदर हंकार नाल भरदा सी। पैरों विच ओ पंजाबी जुत्ती पाई सी, तुरदियां तुरदियां जमीन वाल निकल गया, उस जमीन वाल जिहड़ी शमशान घाट वाल पैंदी सी, रस्ते विच जिन्ने कामे कर्मचारी सब मत्था टेक रहे सन, बंदा फुलदा गया। हंकार नाल तुरदियां तुरदियां अचनचेत रेते ते पैर रख हो रहे सन, भुलेखा पै गया, पैर रखदा धरती भी दबदी है, पैर रखदा ते धरती भी दबदी है। चार कदम अगे गया, एक किसे मुरदे दी हड्डी जिहड़ी शमशान घाट विचों किसे तरह रुड़दी रुड़दी ठोकरां बजदियां रस्ते विच आ गई सी, उहदी तिक्खी नोक पैर विच भी एकदम दर्द होया, तणिया होया शरीर बिल्कुल ढिल्ला पै के पैर फड़ के बह गया, तिक्खी नोक हड्डी पैर विचों कढ़ी। उह विद्वान लिखदा, इंज लगा जिवें पैर विच बज्जी मुरदे दी हड्डी बोल पई होवे, उहने कुझ कहा, इह भाव समझियो, इंज लगा जिवें मुरदे दी हड्डी बोल पई होवे। उन्हें इंज कहा उस हंकार विच तने बंदे नू, कहिंदा जब हम घर से निकले तो बड़े मेहरबान थे, एक तरफ बियाबान एक तरफ कब्रिस्तान थे, मुर्दे की हड्डी पांव से टकराई और कहने लगी, अरे मियां जरा ध्यान से चलो, कभी हम भी इंसान थे। वो बंदिया थोड़ा ध्यान नाल चल, कदे मैं भी इंसान सी, इस चिखा वे सड़ गया हड्डियां रोल रही। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बचन कहे, पहरावा देखे ऊब जाहे, ये शब्द शुरू होएगा भगत रविदास जी दा, जिथे कहेंगे तुझे सुजनता कछु नाहे, ओ बंदिया तेनू समझ नहीं आउंदी, पहरावा देखे ऊब जाहे, अपनी टौर पैसा पदार्थ घर महल वेख के हंकार विच आ जाने। अग्गे साहिब ने गल कही, कहन लगे हंकार विच आउण वालिया, पहरावा देखे ऊब जाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, हंकार विच चलन वालिया तेनू दरगाह विच थां नहीं मिलेगा, दरगाह बैसन नाही जाए, गर्भवती का नाही ठाओ। अगली गल कही, तेरी गर्दन उपर लवे काऊ, काऊ दा अर्थ है पौ, तेरी गर्दन दे उपर बह के मौत दा कां कुरला रहा, जिदन हुक्म होने इन्हें चपट मार के जिंद कढ लेनी, कां तेरे सिर ते घुमदा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवे नवाना, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लेके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

महला नामा मान रे प्रभ की शरण विचारो जिह सिमरत गन का सी उदरी ताको जस उर तारो मान रे प्रभ की शरण विचारो जिह सिमरत गन का सी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ।

दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गाज ग्राह ते शूटा।

0: का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाशमान हुंदे आ आए अज दे पावन हुक्म नूं। इस समय आप जी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरण छो अस्थान तो प्राप्त कन्ना राही कीता। साहिब दी रहमत बख्शिश बन आई तमाम संसार नूं एक ऐसा मुख वाक बख्शिया जिस नाल भुलिया भटकिया दुखिया विछड़िया अपना कुराहे राह दूर करके भुलिया भटकिया अपने दुख दूर करन दा राह प्राप्त करके मेरे साहब दे उपदेश नाल जिंदगी नूं आनंदित बना सकदा। आओ साहब दी सीस लईए मेरे मालिक रहमत करन। बहुत लोड़ है कि मन टिक जाए गुर शब्द नाल श्रद्धा विच पर जाए अते एक भावना रखे जो सुनिया उनु कमाउना है जो सुने कमावे सो उतरे पार इनु संग्रह करना बुद्धि विच। आओ साहब रहमत करन शब्द नु विचारिया भी जा सके इस विच एकाग्रता भी बने इस विच श्रद्धा भी बने ते शब्द दी विचार नु धारण करन वाली बिरती भी बन आए। साहब रहमत करन आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने पले लई ते सरबत दे

0: हे गुरु जह सिमरत गणकासी उदरी ध्यान च रखियो। मेरे साहब की कहंदे ने परमात्मा दी शरण जाना ते शरण जान दे नाल जिंदगी दे ओ कदम बन आउंदे ने। आओ साहब दी रहमत प्राप्त करिए जी
1: रहाओ।
0: क्योंकि जिस दे सिमरन कीतिया गणका वर्गी दा उदार हो गया। गणका सी उदरी इथे सी दे अर्थ ने गणका जैसे गणका वर्गे उधर गए ताको जस उर धारो उसका सिमरन उर कहिए हिरदे विच तारो कहिए टिकाओ। चूंकि गणका सी पापन महापुरख उसके वाड़े जा खलोते उसका जीवन वेखिया वेखिया ते पापा नाल भरी पई है। मैं बेनती करा कोल तोता सी ओ तोता मैं बेनती करा महापुरखां कोल रहन करके राम राम जपन वाला ते गणका नूं आख्या आ लै तोता तू इस नूं राम राम बुलाउणा। गुरु अर्जन देव जी का कथन है गणका उदरी हर कह तोत। मैं बेनती करा ओ तोता बोलदा है उधार गणका दा हो गया। गणका उदरी हर कह तोत ओ रोज अमृत वेले उठदी है उस तोते कोल बैठ राम राम। तोता भी बोलता राम राम। मैं बेनती करा एक दिन अमृत वेला होया हनेरा सी हुन तोते कोल गई हुन तोते नूं कहंदी ये बोल राम राम बोलता नहीं है। सोचती है नेरे च भी गल की है बोलता क्यों नहीं है। जरा क दरवाजा खोलिया होया ए सप वड़िया अंदर तोते नूं खा गया। वो बैठा अंदर सप जदों गणका ने अंदर हाथ पाया इधरों कह रही सी राम राम उधरों सप ने मारिया डंग। बस अंतकाल जो नारायण सिमरदा वाहिगुरु सिमरदा पार हो जांदा। ये हकीकत है जिंदगी भर दे पापा नाल ग्रसी होई वो गणका दा उदार हो गया। ओ वाहिगुरु दा सिमरन पापा नूं कट देंदा है जी
1: रहाओ।
0: हजूर इत्थे विश्राम दे के फरमान करदे हां जी
1: अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन अर निरभय पद पाया।
0: अटल भयो टल तो रहत टिक गया कैम हो गया रहिंदी दुनिया तक उस ध्रुव दा नाम कैम हो गया। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन राजे उतान पाद दा पुत्र है ध्रुव सगी मां है। मैं बेनती करा नाल एक मित्रेई मां है सुनीति है सकी मां। बाद विच राजा इसकी छोटी भैन नाल व्याह करदा वो है मैं बेनती करा सुरुचि। हुण जदों एक दिन बाप दी गोद विच बैठा है मित्रेई मां सुरुचि ने इस नूं बांह तों खिचिया घसीटिया चपेड़ मारी ते मुखों आखिया जे बाप दी गोद विच बैठना सी ते मेरे पेट तो जन्म लेंदो। मैं बेनती करा ए डिडो निक्का होया रोंदा रोंदा अपनी सगी मां कोल जाके कहंदा मां मैनू तू दसना तू इस बाप दी गोली है नौकरानी है के रानी है। ते मां ने आखिया सी पुत्र मैं कर्मा दी मारी गोली हां जन्म लेके मैं भावे रानी बनी है। मैं बेनती करा कि मैं बाप दी गोद विच नहीं बैठ सकता मां मैं दसना। ते मां आखिया से पुत्र जे भगती करेगा ना राम राम जपेगा ते तू बाप दी गोद विच बैठन दे लायक हो जाएगा जा सिमरन विच चला जा। कहंदे ने ध्रुव सिमरन वाल तुर जांदा है घर छड़दा थोड़ा जिहा एक नेड़े ही इलाका बड़ा एकांत दा उथे जा बैठदा है। जदों जांदा है ना उस समय नारद मिलता है वो सिमरन वाल होर प्रेरणा करदा है। इधरों पुछदा भी किधर चले है जदों सारी हकीकत का पता चलदा आके उतान पाद बाप नूं कहंदा इको एक ते पुत्र जंगल विच भेज दिता ही झिड़क के उस नूं राज किस नूं देवेगा। थोड़ी जी होश आई जांदा मगर बेटा चल मैं तेनू गोद च भी बिठावांगा मैं तेनू अज अद्धा रात भी देवांगा। ते उस समय ध्रुव ने आख्या सी बाप वापस चला जा, अजे ते सिमरन वाल एक कदम उठिया, अद्धा राज मिलदा जे सिमरन विच भरपूर हो जावांगा ते पता नहीं की मिलेगा। मैं बेनती करा उसी अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन और निरपय पद पाया, निरपय अवस्था खौफ तो मुक्त, जिंदगी आनंदत बना ले सिमरन ना।
1: दुख हरता एह बेद को स्वामी तैं काहे बिसराया।
0: ए स्वामी दुख हरता है, ए दुखा नू नाश्ट करदा है, ते भलिया जो दुखा नू नाश करन वाला मेरा स्वामी मेरा मालिक तू क्यों भलाई बैठ, तैं काहे बिसराया। अज दुखां विच भी ग्रसे ने, रब भी भुली बैठे ने। अज संसार दी पापां नाल जिंदगी ग्रसी भी पई है, पर मैं बेनती करा सिमरन वाल फिर भी नहीं कदम उठदा। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे ने तू क्यों भुलाई बैठा, सिमरन कर तेरे दुख कटे जाणगे। नानक दुखिया सब संसार, अज हर संसार वड़े वड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापै चिंता रोग, अज चिंता विच ग्रसिया होया संसार है। हजूर कहंदे ने चिंता विच ग्रसिया रहे तेनू चिंता बार बार अंदर आए, एक ही हो गया दुख क्यों नहीं कटे जानगे। दी बजाय तू चिंतन कर, चिंता ना कर। मैं बेनती करा तू क्यों नहीं रब दा सिमरन करदा जो परमात्मा सारे दुखां नू नष्ट करन

0: 1094 अंक ते ये मारू की दूजी वार आरंभ हो रही है जो कि पंचम पातशाह जी दे उचारण किते बोल ने मारू वार महला पंजवा दखने महला पंजवा ए विद्वाना की खोज भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वाले खोजे है भी गुरु नानक पातशाह जी का जिस अस्थान ते आगमन होया उस अस्थान नू केंद्र मन के उस तो जेड़ा दखन का इलाका पैंदा है वो मुल्तान साहू सिंध इलाका पैंदा है उस इलाके की भाषा विच ए पावन दखने यानी दखनी भाषा की ए पावन बोली जो सतगुरां ने इत्थे ज्यादातर दद्दे की थां ते डड्डा वरत्या गया ध्यान च रखियो ते साहब जी ने ए दखने महला पंजवां विच जो पावन वार उचारण कीती है आरंभ विच हजूर सारियां नूं इक ओंकार नाल जोड़ते ने इक ओंकार ओ तमाम ब्रह्मांड दा मूल है। बड़ी वड्डी इक गल इह है अनेकां संसार दे जीव जंतु पैदा करके आप इक है अनेकां दे अंदर निवास करके आप एक है सूरज एक है करोड़ा घरे पानी दे भर के रख दीजिए सब अंदर प्रतिबिंब पैंदा है पर सूरज एक रहिंदा है चंद्रमा एक है हब समानी जोत जो जल कटाऊ चंद्रमा कटाऊ घड़ियां दे अंदर जिवें चंद्रमा देखो असीं कहने ना मेरे अंदर भी जोत तेरे अंदर भी जोत हुण जोत ते सब मैं जोत जोत है सोए हुण करोड़ा जीव मनुख ही नहीं पशु पंछी कीड़े मकौड़े सब अंदर जोत है पर कमाल दी गल ए है करोड़ा अंदर जोत है पर आप करोड़ा नहीं एक है अनेक है फिर एक है वो एक ओंकार है जो सतगुर प्रसाद सतगुरु जी की कृपा नाल जानिया जांदा है जी
1: तू चाओ सज्जन मंडिया डेई सिस उतार
0: तू चाओ सब चवो मुखो इथे चाओ दे अर्थ ने कहो बोल ए मेरे सज्जन तू बोल ना कारण कवन अबोल की कारण हो गया तू बोलता नहीं है बोलना तू चाओ सज्जन मैडिया तू मैडा सज्जन है मेरा मित्र है देखो असा भरावां नाल गल कीती पति नाल पत्नी नाल बाप नाल संसार नाल दोस्तां मित्रां नाल कदी रब नाल गल करदिआं आखीए भी ऐ मेरे मालिक तू मैनू कुछ कहो ना बोल ना मेरे नाल हकीकत पता की है एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई जिवें दो भरा इको कर रहन पर गलबात ना करन आपस पति पत्नी रहन इकट्ठे पर गलबात ना करन धन फिरका एक ही संग वासा अंदर मैं भी हां अंदर तू भी है जीव भी है आत्मा भी है पर असीं रहिंदे इकट्ठे हां पर गल बाहर ते सारिआं नाल करदे हां पर कदी रब नाल भी गल कर लईए मैं बेनती करा जिंदगी दा नक्शा बदल जाएगा कदी अकेले बैठ के कदी कह लेना मालिक तू बोलना तू कुछ कहो ना तू आख ते अंदरले आपे चो अजपा जाप चल पाए ते अंदर दी सुरत विच हुण वाहिगुरु बोले ओना समझना भी मैं बोलदा हुण वाहिगुरु आप अंदर पिया बोलदा है तू चौ सज्जन मैडिया देई सिस उतार देई इथे है जिवें अर्थ करांगे ते देई उथे देई नू डड्डा दखनी भाषा है ना ते देई सिस उतार मैं अपना सीस उतार के भेटा कर दिया तू आख ते सही ना मैनू मैं बेनती करा किस ढंग नाल रब दी नेड़ता कर दिया मेरे साहब जी ने गल कराई है जी
1: नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार
0: महिंजे मेरे नैन तरस दे ने नैन तरसन दर्श परसन नह नींद रहन विहानियां ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲ, ਪਾਕ ਪਰਵਤ ਗਾਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅੱਜ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।
1: ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ,
0: ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

0: तौ नाल मेरा हिरदा मेरा आपा मेरी सुरत तेरे नाल प्यार पाई बैठी है। मैं ये वेख लिया जे तेरे नाल प्यार होवे रब जी जे मेरा तेरे नाल नहीं होवे ना ते मैनू फिर दूजा पासा देखदा भी ब्याह ये दूसरा नेहो कूड़ावे देख ये जिन्ना दुनिया का प्यार सारा ही झूठ है। प्रीतम जान लिहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहू को नाही सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरे बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरे ये दुनिया का सारा नेहो झूठ है। नानक कचड़िया से तोड़ ये कच्चे ने ये ज्योंदे ही विछड़ जांदे ने। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तकिया भी मालक तेरे नाल प्यार पै जाए तू एक बारी बांह फड़ लै तू कदी बांह छड़दा नहीं तू लोक विच भी सहारा बनदा तू परलोक विच भी मेरे नाल जांदा। इस करके मेरे साहब कहंदे ने मैं तेरे नाल प्यार पाया ते बाकी सारा दुनिया दा मोह नेहो मैनू झूठा नजर आया जी।
1: कपड़ भोग डरावणे जिचर पिरी ना देख
0: सुंदर कपड़े वधिया वधिया स्वादु पदार्थ खान वाले कपड़ भोग मैं बेनती करा ये जिन्ने भी ने सारे डराने ने कदों सानू तो डराने नहीं ना लगते सानू तो वधिया कपड़े मिल जाने ते बड़ा चा जिहा लगता सुवादु पदार्थ खान नू मिल जाने ते बहुत चंगे जे लगते ने पर जिन्ना अंदर रब का प्यार पै गया ना अंदर रब का बिरहा पैदा हो गया वो कहंदा भी जिचर पिरी ना देख मैं जिन्ना चिर अपने पिर मालक नू देख के ये वेख नहीं लैंदा उन्ना चिर मैनू दुनिया दे आ कपड़े आ भोग पदार्थ ये सारे डराने लगते ने इन्ना विच कोई सुख नहीं है कोई शांति नहीं है एवें थोड़ी देर दे लई इन्ना पदार्थां दे नाल मन पतीजदा हा हा करत बिहानी अवदा तां मैं संतोख ना पाया ये सारी मनोरंजन की माया। मैं बेनती करा अज लोग मनोरंजन लभदे ने हजूर कहंदे ने मन रंजन रंजन दे अर्थ ने मन दी खुशी जिस नाल मन खुश हो जाए लोग तरह तरह दे ढंग तरीके खोजदे ने आओ चंद पल दियां खुशियां लभिए। मेरे साहब कहंदे ने भलिया तू चंद पल दियां तू घंटे दो चार घंटिया दियां तू दो चार दिनां दियां खुशियां की लभदा आ मैं तैनू सारी जिंदगी दियां खुशियां तेरी झोली विच पैंदा सत खुशियां कीर्तन जप नाम लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे ते जे करके उस मालक दे दर्शन दीदार नहीं ते ए कपड़े ते भोग पदार्थ ए सारे डरावने ही हां जी।
1: महला पंजवा
0: इत्थे हजूर तीसरा श्लोक उच्चारण करदे आ धन गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे हां जी।
1: उठी झालू कंतड़े हौ पसी तौ दीदार
0: झालू दे अर्थ ने अमृत वेला चा लागे उठ नाम जप उठी झालू मैं अमृत वेले उठ बैठी ए जिंद अमृत वेले जाग पई किस वास्ते अपने कंत वास्ते उठी झालू कंतड़े हम पसी तौ दीदार मैं अंदर आपा अमृत वेले जाग के वाहिगुरु वाहिगुरु करन बैठ गया तेरे दीद हो जान तेरे दर्शन हो जान। भाई नंद लाल जी नूं पुछिया तुसी कहंदे हो गुरु तीर्थ है ते लोग तीर्थां ते जांदे ने जाके कोई सौ खांदे ने मैं आ छड्या तीर्थ ते आया तुसी गुरु तीर्थ ते आके कोई सौ खाधी कहंदे हां कहंदे की सौ खाधी कहंदे मैं सौ खाधी अज तो बाद अमृत वेले दी नींद हराम कर दित्ती बेदारी अस्त जिंदगी है आरफाने शौक गोया हराम करदम आज आइंदा ख्वाबे सुबह आज तो बाद आइंदा मैं ख्वाब सुबह नहीं लेवांगा मैं सुबह नींद दी गोद विच नहीं जावांगा मैं सुबह गुरु दी गोद विच जावांगा। ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਚੂਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਬੀਜ ਕਰੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਬੀਜ ਤੇ ਅੰਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਤਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੱਤਾ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹੋ ਪੱਸੀ ਤੋ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ।
1: ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਕਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪਾਸੇ ਹਬ ਰਸ ਸ਼ਾਰ।
0: ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਹ ਨੇ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਸਭੈ ਕਿਸ ਸਾਜਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਆ ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਵਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਜਲੇ ਇਹ ਹਾਰ ਇਹ ਤਮੋਲ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ

0: संसार की रचना हुई ते वाहिगुरु जी ने नाल मैं बेनती करा धर्म ग्रंथा का भी वो एक ऐसा विवरण बना दिता ताकि लोग समय समय अनुसार उथों पाप ते पुण दी विचार ले सकन। हरि दी आग्या नाल वेदां दी पहला रचना कीती गई। इत्थे मैं बेनती कर लगा, थोड़ी गल ध्यान च रखियो, अज दे समय विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने साडे वास्ते सब नाद वेद गुरबाणी सानू गुरबाणी दा ए महान धर्म ग्रंथ दे दिता। इथो तुसी पाप ते पुण दी विचार कर सकदे हो वी जिंदगी विच पाप की है, जिंदगी विच पुण की है। कल मैं एहो पुण गुण गोविंद गाहे, गोविंद दे गुणा दा गा पा, ए कलयुग विच पुण है ते रब नू भुल जाएगा ते सब तो वड्डा पाप है। मैं बेनती करा वाहिगुरु जी ने पाप पुण दी विचार भी दित्ती जी।
1: ब्रह्मा बिशन महेश त्रै गुण विस्थारिया,
0: ते तिना गुणा दा विस्थार कीता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इथे ब्रह्मा नू रजोगुण, विष्णु जी नू सतोगुण, शिवजी नू तमो गुण विच ए तिना गुणा दी रचना करके संसार दी मर्यादा चलाई। चूके एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाय दीवान, ए तिना गुणा राही रचना कीती जी।
1: नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया,
0: नौ टुकड़ियां विच सारी धरती नू साजिया गया। इथे मैं बेनती करा नावखंड पृथ्वी साज हर रंग संवारे, सारे संसार नू तरह तरह दी रूप रेखा दे के करते ने संवारिया। मैं बेनती करा जो बनाया है वो पूरा बनाया, अधूरा कुछ भी नहीं रहन दिता। जे पत्ते बनाए ते पूरे बनाए, जीव जंतु बनाए ते पूरे बनाए, सारे संसार दी रचना नू करते ने आप ही संवारिया है जी।
1: वेकी जंत उपाए अंतर काल धारिया,
0: वेकी दे अर्थ ने इत्थे रंगा रंगा दे जंत, जीव जंतु पशु पंछी मनुख हर तरह दी रचना रचाई ते अंतर काल धारिया। इत्थे थोड़ी जी बेनती करांगा, जदों आउंदा ना सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, उथे कल दे अर्थ ने इज्जत, इथे कल दे अर्थ ने शक्ति, किते कल दे अर्थ आए ने कलयुग ते किते कल दे अर्थ आए ने कालख। खैर मैं बेनती करांगा, हजूर कहंदे ने तरह तरह दे जीव जंतु पैदा करके अंदर अपनी शक्ति सब दे ही टिकाई होई है जी।
1: तेरा अंत ना जाने कोई सच सिरजन हारिया,
0: क्योंकि तेरा अंत नहीं कोई जान सकदा भी कित्थों तक की पुज किवें बनाया किन्ना कु बनाया। ओ समुंदर एडा वड्डा बनाया सी उस दा था नहीं पा सकदे, सूरज इतना जिस दियां किरणा दा था नहीं पा सकदे भी किन्नियां किने। मैं बेनती करा करता तू सूरज चंद ते सागर दरिया बनाउण वाला तेरा अंत असीं कित्थों पा सकदे हां। बस इको गल है, मैं बेनती करांगा एक पंक्ति दे तीन विश्राम लैके गल समझियो। लिख नाम अंदर सुरत विच नाम लिख, दूजा कदम सलाह लिख उंदी सिफत सलाह कर वाह वाह, ते तीजा कदम है लिख नाम सलाह लिख लिख अंत ना पारा वार, ए करता तेरा अंत नहीं है अंत ना सिफती कहन ना अंत, तेरा अंत तेरा पारा वार नहीं पाया जा सकता जी।
1: तू जान है सब विद आप गुरमुख निसतारिया,
0: तू सारे तरीके आप जानन वाला, तू जाने सब विद आप, हर कुछ तेनू पता है इस जीव जंतु नू किवें चलाना है, इनू किवें धरती तो आकाश ते चढ़ाना है, तू किवें आकाश तो चढ़े नू खाक विच मलाउना है। मैं बेनती करा किवें संसार चलाउना है, तू जाने सब विद आप गुरमुख निस्तारिया, जेडे गुरमुख बन गए गुरु वल मुख कर लिया उन्हां दा पार निस्तारा हो गया। मैं हथ जोड़ अर्ज करांगा अपने जीवन विच धन गुरु ग्रंथ साहिब वल्लों पिठ ना देना, इधर मुख जोड़ी रखना, ਹਕੀਕਤ ਇਹ

0: आप गुरमुख निसतारिया।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2300

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: परमजीत तलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत तलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत तलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दें श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार पया काहु नानक करते किया बाता जो किछ करना।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिनवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हरानक अनेक अनंता। तेरी अनक कर हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तूंदरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरडै पई ले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले। मान एकना चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।
ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम काहो, आप हाद मुहे बचाओ। सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सा बैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तोज जू करी हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कैवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह वध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरा स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वादन सृष्ट सब धारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सागरी सृष्ट दिखाए अजंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।
पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तै है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो, ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे वारा। जिन हर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे, तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखाने। दोहरा

गोविंद दास तुहार, राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सह सेती मन वजियां बाधाइया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया, शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर नार हो तू मन मेरे, दुख सब सारना अंगीकार हो करे तेरा, कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै। घर तां तेरै सब किश है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिसदी आए वड्याईया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। और करम पाया तुद जन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद बाजे।

मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो

अब हम चले ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राख हो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राख हो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राख हो लाज मरार। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रा मेरा। एह बिनंती सुन प्रा मेरे, देहे नाम कर अपने चेरे। अपनी सरन राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किन्ने बिरले जाते। सुनो बिनो प्रा मेरे मीता, चरण कमल वस है मेरे चीता। नानक एक करै अरदास, बिसर नाही पूर्ण गुण तास। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। हों आया दूर हों चल कै, मैं तकी तौ सरनाए जियो। मैं आसा रखी चित मैं,

हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई, शब्द ही मुक्त पाई। शब्द मन तन निर्मल होआ, हर वसिया मन आई। शब्द गुर दाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रसना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, तिस बिन

भाई करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर ना दूजा कोई, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, तिस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे पाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।